फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: Good morning, it's 10:21. Aap sun rahe Sunrise Radio, Shabnam Sahi ke saath. Now, I have a very important message. Kya aap jante hain ki childhood vaccinations bachchon ko best protection dete hain? England mein har saal 5,000 से भी ज्यादा बच्चों की मौत होती है. बचपन के इन्फेक्शंस, सीरियस बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन या फिर कभी कभी लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी की वजह बन सकते हैं. बचपन के इन्फेक्शन जैसे मीजल्स या वूपिंग कॉफ समाज में बहुत आसानी से फैलते हैं. अगर आपका बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है. याद रखिए, NHS पर दिए गए सभी चाइल्डहुड वैक्सीन्स दुनिया में मिलियंस ऑफ बच्चों ने लगवाए हैं जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड एक्सेलेंट है. प्लीज रिमेम्बर दिस, अपने बच्चे को बेस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए उनके टीके, उनके वैक्सीनेशंस टाइम पर लगवाना बहुत जरूरी है. अगर आपके बच्चे ने कोई वैक्सीनेशन मिस किया है, आज ही अपने GP को कैच अप के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए. क्या आपके बच्चे के वैक्सीन्स अप टू डेट हैं? उनके रेड बुक को चेक कीजिए और अपने GP प्रैक्टिस से संपर्क कीजिए. फॉर इन्फॉर्मेशन NHS.UK/childhoodvaccinations पर जाइए.
2: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
3: ये है संगम. पढ़ लिख कर आर्किटेक्ट बनना था इनका ड्रीम, लेकिन ऊपर वाले की थी कुछ अलग ही स्कीम.
1: A house full of chaos, a girl full of dreams. Watch a heartwarming story of love, family and emotions. Watch Bareilly Ki Bachchan Monday to Friday at 8 PM on Colors TV. Steve has left me several voice notes. Steve, I'll get to that in just a bit. Nirmal ji, thank you. Whoever has taken a moment to send me your options, A or B, thank you very much. Got a message here from Kudsia in Germany who says, Shabnam, today it is my sister Huma's birthday today. I hope you have an amazing time celebrating. Meena Ansari is saying, you know what, I've already forgotten the four ingredients for the dressing. I left it out only because I couldn't remember it. You know what it is? Thick grain mustard, any that you can find. I'm not fussed. Thick grain mustard, olive oil, lemon juice and honey. I'd like to think in equal proportions, about a tablespoon each. But if, like me, you like your dressing to be sharp and tart, do not hold back on the lemon juice. Go for it, okay? And you're adding this to chunks of watermelon and a lot of feta scattered on top. Good morning.

0: Be Dil Tera Aashiq. Taking you back to the 90s, we had today Madhuri, we had Salman and Tej Sapru in today's trio.
1: प्यार करने वाले कभी पीछे नहीं हटते.
2: बकवास मत करो, तुम्हें हटना ही होगा नहीं तो मेरी बस मिस हो जाएगी.
1: बस बस तो और भी मिल जाएगी, लेकिन अगर मुझ जैसा आशिक मिस हो गया ना तो सारी जिंदगी पछताती रहोगी.
2: My foot. Oh no.
3: Hi Sonia.
2: Hi Mr.
3: प्रताप सिंह.
2: Mr. प्रताप जी, how are you?
3: मैं तो ठीक हूँ, कहाँ जा रही हैं आप? आइए मैं छोड़ देता हूँ.